0: हाय पर्वत फिर तराई हरू सब नेपाली बेची तलाक पालो बहुना गए चर्चा पी
1: बाबू
0: गाई मोला मोली न गए हरम कुमारी छोरी मैं बना छोटे।

0: गोपी निकाली निकाची ना था सारी चाहिए तोरी चाहिए लाने को हाथ जोड़ी
1: करना कुर्सी लेना कर गई थी
2: चतुर्बाहु
0: नारायण पदम का रुका वो माथी चौड़े रहा
3: मेरे कौन
1: मसाले
0: रहा
1: हरी हरी
0: ओम मुरली।

सत्मा दिए न ते मेरा मनमा दही चोरे माखन चोरे चोरे चोरी साड़ी धर्मानंत पाप चोरे तारे भवदला पारी।

नानो दैनो जंजो वंशिन राजे का नानो दैनो नानो दैनो ए कृष्ण नानो दैनो जंजो वंशिन राजे का नानो दैनो

0: सामुदायिक पहुँच का लागि संचार रेडियो सैलुङ सामुदायिक एफएम 92.7 मेगाहर्ज
1: अल्पाइन पब्लिक स्कूल सैलुङ समाचारको सहयात्री।

0: रेडियो सैलो सामुदायिक एफएम 92.7 मेगाहर्ट्ज
1: अल्पाइन पब्लिक स्कूल सैलुङ समाचारको सहयात्री।

प्रत्येक सातक शुक्रबार राति 8 बजे र पुनः प्रसारण आइतबार अपरान्ह 4 बजेको समाचार पछि कार्यक्रम गीती कथा। सुन्न नभुल्नुहोला रात्रिकालीन साहित्यिक प्रस्तुति कार्यक्रम गीती कथा।

0: नमस्कार रेडियो सैलो सामुदायिक एफएम बैलेन्स थुप्रो 7 MHz म बद्री प्रसाद सापकोट आज विक्रम सम्बत 2083 साल भाद्र कृष्ण पक्ष सन् 2026 अगस्त 29 तारिक भाद्र 13 गते शनिबार परेवा तिथि अब स्तुति गरौं
1: आयु द्रोण कुमार कैसरी आओ साक्षेण कल्पयभरी

आनन्द कन्द श्री सचिदानन्द भगवान को जय, श्री सद्गुरु महाराज को जय। प्रेम चित बोलिए श्री आनन्द कन्द सचिदानन्द भगवान को जय, श्री सद्गुरु महाराज को जय। सबै गुरु परिवार को जय, सबै संत महात्मा को जय।

0: ब्रह्मन भैया जे हे बनायो बरखै भो ब्रह्मा चोला
1: अष्टर को जखोशे
0: बाला ले गए जंगल छोरी को एक परेशान दे दाना।